0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: कब्जा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे। मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे। बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात। बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए। खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए। बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे। फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है। जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 5923-2860।
1: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे। आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीजे के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860, 0300-585-8484।

0: तालीस। इन अलावा इंसाफ मेडिकल स्टोर DHQ बडग्राम, सलमान मेडिकल स्टोर DHQ बडग्राम, बख्तियार अली मेडिकल स्टोर पेमान रोड गुलबहार कॉलोनी, सदाकत मेडिकल स्टोर गिरवले मोड, रॉयल बेकरी दुराहा बाजार बडग्राम, रियाज हेल्थ सेंटर बिलमुकाबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम, अशिफा क्लिनिक पेमालाडा बडग्राम, जीशान होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर दुराहा बाजार बडग्राम, तनवीर अहमद मेडिकल स्टोर शंगरीला होटल बडग्राम, जैन मेडिकल स्टोर आमिर कॉस्मेटिक्स अजमेरा प्लाजा लेडीज मार्केट बडग्राम, दारंगे डॉक्टर यार मोहम्मद मेडिकल स्टोर बडग्राम, कले पाइंदा खिल कॉलोनी अजलान मेडिकल स्टोर की हम दाता था मेला विदेशी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, संगा ले खैर जोड़ बराबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जरूर जमंगा सोग दे कम जेना। स्तासो आवाज मंगता नराजी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर खैर तासो खैर जोड़ बराबर ही
1: आई।
0: हजे नो बिल्कुल बिल्कुल ना तो बगीत अच्छा
1: प्रोग्राम दा से रीज मुंदा पता ना दा इस्तास वफल टाइम कम जना हजे जरीन परेशान है न्यात
0: इनशाला इनशाला दा बता लगो वो जमुन प्रोग्राम टेम बिल्कुल खत्मी नुसबा इनशाला दा वो लगो ठीक दा मास्ता ख्वाहिश वुली का इनशाला दा बसबा ता उसत वो लगो जजा कर ला खुशहाल आबाद उसे मंग सरा उसे जजा कर ला। ग्रह दिन को जमंगा दगा सिरा भी बता था दे बडग्राम पर हर इलाके के मिलावी की जमंगा मियन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोड़ बडग्राम दो सहा दराबिती नंबर 0311

0: ग्रानो रिदुन को तसो आवाज अवरे रेडियो अमल 88
1: आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल फिर शर्मा के रह गए।
2: हमारे हसीन चेहरे का सीक्रेट नो टेंशन ब्यूटी क्रीम,
1: 5 डेज ब्यूटी प्लान के साथ लाए इतना निखार जो रहे हमेशा बरकरार बिना किसी साइड इफेक्ट के।
2: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जिल्द को बनाए मुलायम और चमकदार,
1: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
2: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।

क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।

हवीजी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रहा, क्या हुआ मेरे आवाज को, क्यों हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं देखता हूँ क्या वजह हो सकता है। खैर ठीक पे इंशाल्लाह ताला आवाज पर बिल्कुल क्लियर जी, खैर जरा ठीक निकल मसला भी इनशाला दाग मसला भी दखेर सरा खिल इनशाला आवाज कम दी आगे बताओ दखेर सरा सफा दर जी, बस टेंशन में ना ले खबर तुम बिल्कुल टेंशन में ना ले, जो टेंशन ना लेगा ना तो ब्या बजान जरा जगह जिदा टेक्निकल इशूज भी खिला आवाज सफा भी कला क्लियर भी कला नेट इशूज भी ना मसले बकरा जी खजी उदू को दस

अवैची अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, आज बटाग्राम में दो चांद नजर आए हैं, दो चांद नजर आए हैं। दो चांद नहीं होते हैं ना, एक चांद होता है। अवैची दो चांद नजर आए हैं, एक पलंगू और दूसरा बटाग्राम चांद नजर आए हैं। माशाल्लाह बहुत खूब। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बटाग्राम में और वापस न जाए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। खुशाला आबाद और जवंदी हो। इंशाल्लाह खैर सर बटाग्राम इंशाल्लाह जमीन का प्रोग्राम चिकन दी दू नदरी बजूबर पता सो रोजाना डेली और डेली रूटीन सर इंशाल्लाह प्रोग्राम जमंग जारी उसारी जमंग जिंदगी भी जुन इंशाल्लाह नोतासो बता दुला प्रोग्राम दू नी बजू पूरे और खैर सर आवाज न राजी है आवाज खराब दे आवाज ठीक थे खास सबा गुल आवाज ठीक खैर दे मड़ कल कल बस बाजी खलक भी हुई खूब हुई गा कि

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क अमन।
5: ग्रानो आवृदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

0: प्रदीप को उस बिल्कुल दासुर अतले शे प्रोग्राम के मुद्दा कॉल कवले शे मैसेज कवले शे पर 311-8433-878 बांदे बराजे प्रोग्राम के मुद्दा कॉल कवे और द मैसेज दलारी हम रातले शे पता नंबर बांदे दासु मुद्दा प्रोग्राम के मैसेज हम ले गले शे 311-8433-878 कुम जमुची ऑफिशियल नंबर दे बांदे हम दासु प्रोग्राम के रातले शे मुद्दा कॉल कवले शे 311-309-71-88-99
1: 0309-711-88-99
0: फर्स्ट कॉल तरफ गुरु मुसर लाइन बाजी सोती और सब अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम जी।